चकर चेहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे सहाण गणिजै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्वै सर्वनाम कथ कवन

अमृत नाम हृदय मह दीनो, जन्म जन्म की मैल गई, निवरे दूत दुष्ट बैराई, गुरपूरे का जपिया जाप, कहा करे कोई बेचारा, प्रभ मेरे का बड़ प्रताप, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख

कहूं ब्रह्मचारी कहूं हाथ पैर लगावे बारी कहूं दंड धारी हो गए लोग

देवता या देव जच गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेस को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक देह एक बन खाक पाद आदस आप को रलाओ है। अल्लाह अपेक सोई पुराने और कुरान योई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हुए के फिर आग में मिलाएंगी। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग को डुबजत है पान की तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्वरूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपज सब ताही मैं समाएंगे। कित कछ मछ कहते उनको करत पछ कहते अछ वछ हुए सपाछ उठ जाएंगे। केते नाव बीज का अच पच को करेंगे पछ केतक प्रताच हुए पचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे। तेज ज्यों तेज माया तेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही मैं समाएंगे। कूकत फिरत केते रोवत मरत केते जल मैं डुबत केते आग मैं जरता केते गंग बासी केते मदीना मक्का निवासी केतक उदासी के परमाए ई फिरत है। करवत सहत केते भूम मैं गडत केते सुआ ब चढ़त केते दुख परत है। ज्ञान मैं उडत केते जल मैं रहत केते ज्ञान के विहीन जग जारे ही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बटे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी कस हारे चंदन लगाए हारे चोआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी।

गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तपंत हारे तापसी तवा प्रसाद भुजंग प्रयात छंद न रागंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न मोहंग न क्रोहंग न द्रोहंग न द्वैखंग न कर्मंग न भर्मंग न जन्मंग न जातंग न मित्रंग न सत्रंग न पितरंग न मातंग न नेहंग न गेहंग न कामंग न तामंग न पुत्रंग न मित्रंग न सत्रंग न पामंग अलेखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपंग सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध रूपंग नहीं जान जाई कछु रूप रेखंग कहा बासता को फिर कौन पेखंग कहा नामता को कहा कह कहावे कहा कह बखानो कह मैन आवे न रोगंग न सोगंग न मोहंग न मातंग न कर्मंग न परमंग न जन्मंग न जातंग न द्वैखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे।

देह है न गेह है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न साथ है न दोग है न दाग है न द्वैग है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंक है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चूर है न साहु है न साह को कुमार है न नेह है न गेह है न दे को बनाओ है न चल है न चित्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेग है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अपेक है न तात है न मात है ख्याल खंड रूप है अछेद है अपेद है न रंग है न पूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अपंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न सोग है न पेद है न पंड है न अंग है न रंग है न संग है न साथ है प्रिया है पवित्र है पुनीत।

ना काल है ना बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है अपंज है, अपरम है अपूत है, अछेद छेद है सदा, गंज गंज गंज है, अपूत अपेघ है, बलिया राग रूप रंग है, न द्वैग है न पेघ है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात है, न चित्र चिन्ह वर्ण है, बेअंत है अनंत तेज जानिया, अपूम अपिज है सदा, छिज तेज मानिया, न आद है न व्याध है, अगाध रूप लेखिया, अदुख है अदाग है, अच्छा प्रताप पेखिया, न कर्म है न भर्म है, न कर्म है न परम है, न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है न तंत्र है, न मंत्र को रलाओ है, न छल है

है न आध है न गाध है, ब्याध को विचार है, न रंग राग रूप है, न रूप रेखरार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा, सितस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा। अगस्त याद जीव डी तपस तपीब सेखिया, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिया। अगाध याद देव की अनाद पाद मानिया, न जात पाद मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिया। सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल

दुष्ट हरणं पुष्ट कारणं सर्वके प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्वके अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्वके निजभाम सर्व भुक्ता सर्व जुक्ता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमरत सर्व शास्त्र सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्वभर्ता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि अखंड भूमिका जलि दल मह जब अमंड सृष्ट चार विचार जिते जानिए सब विचार आदि व्यापार श्री पर दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्वमान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावई शिव रुद्र मुख चार कई ए कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भे मुख चार आदि अंत मद जाको भूत भव भवान सत द्वापर तृतिया कल युग चतर काल प्रधान त्याय त्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार गा हार हार थके सब नहीं पाईया तह पार नारद आदि वेद व्यास मुन महान अनंत त्याय त्याय थके महा सब कर कोष्ट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोध सो थके महासुर पायो नह पार त्वा प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन सब

कह जीतब का मरण है कवन सुर कह नरक को सुगड़ा को मूडता कहा तर्क अवतर्क दोहरा को निंदा जस है कवन कवन पाप कह धर्म कवन जू को भोग है कवन कर्म अपकर्म दोहरा कहो सुसम कासो कह दम को कहा कहंत को सूरा दाता कवन कहो तंत को मंत दोहरा कहा रंग राजा कवन हर्ग सोग है कवन को रोगी रागी कवन को तत मोह तवन दोहरा कवन सृष्ट को पुष्ट है कहा सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को पृष्ठ है कहो सकल।

अष्टाट प्रशासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे शुद्ध सनाहे अगमथाहे एक प्रते जय जय हो सीमा खासुर मर्दन आदि कुमार अगाध प्रति सोर नर मुर्न बंधन दुष्ट निकंदन पृष्ठ विनाशन व्रत मथे कावरु कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आदि कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहण पितल तले जय जय हो सी सब ठौर निवासन पाए पताज कास अनली संकटी निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकरखण तुंद तबे दुख दुख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छी शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापन जपत जीवी जय जय हो सी मैं शस्त्र प्रकरखण याद अनिल अगाध अभी चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिछ सरंग चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण ते छसरे करकसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर पुजी दामनी दमंके की हरलंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्तासुर खंडन सोम्भ चक्रत निसोम्भ मथे बारज बिलोचन ब्रतन विमोचन सोच विसोचन कवच कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे सुभ्र सुभासे दुष्ट ग्रसे चंचला प्रअंगी वेद प्रसंगी ते तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मैं कासुर मर्दन आद अनाद अगाध उर्धं कंटका विराजय रुण झुण बाजय ब्रह्म भाजय सुनत सुरंग कोकिल सुन लाजय गिल बिग भाजय सुख पराजय मध उरंग

चिंतामणि प्रकाशे उन्तर नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बली दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दुष्ट प्रधरखण बितल तली अष्टायत बाहन बोल बाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय हो सीमा कासुर मर्दन आद अनाद अगाध बिरते दुख दुख प्रभक्षण सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरी सारंग सुनाहे दुष्ट प्रदाहे अर्दल गाहे दोख हरे गंजन गुमाने अतुल परवाने संत जमाने आद अंते जय जय हो सीमा कासुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंती।

चचरासर मारन नरक निवारण पद उदाहरण एक पटी पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टी चंद्रानन चारा नरक निवारा पदत उधारे मुंड मथे जय जय होसी मैं खासुर मर्दन धूमर विधुंसन याद कथी रक्तासुर मर्दन चंड चक्रदन दान वर्दन बिड़ाल बधे सरधार बिबरखन दुर्जन तरखन अतुल अमरखन धर्म धुजी धूमराज विधुंसन सुरुण चुनसन सुमन पाद सुम मथे जय जय होसी मैं खासुर मर्दन आद अनिल अगाध कथे त्वा प्रसाद पादड़ी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम कियो आप करते पसार जत बबूदर भयन तुम कहो जथा मत्रैण तंत करता करीम कादर कृपाल द्वय भूतन भय दयाल दाता दुर दुख दोख रह जह नेत नेत सब वेद कहत कई उच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाओ सब जीव जंत जानत जाहे मन मूड क्यों ना सेवंत ताहे कई मूड पात्र पूजा करत कई सिद्ध साध सूरज सेवंत कई पलट सूरज सीधा कराए प्रभु एक रूप द्वय कह लखाए अनछिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंधर अद्वै अनास सब रोग शोक ते रहत रूप अनभय काल छह स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोख हर दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजना जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पात नहीं पर भेद परम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय छत्र मित्र दो एक सार छह स्वरूप अचल पर जानी न जय जय रूप रेख गह बास्तास कह कौन पीख कह नाम तास है कवन जा जय छत्र मित्र नहीं पुत्र प्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चिन्ह नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धंग बृहत सिद्धंग स्वरूप उद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग जन छिज तेजन भिज अदाग जल थल मही बंधन तुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जय जय पैर पार दी नान दोग दहता उदार कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र जुकिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत

पक्ष पशु नग नाग नराधिप सर्व समय सबको प्रतपार भोगत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं कर्म विचार दीन दयाल दया निध दोखन देखत है प्रदेत नहार दाहत है दुख दुखन का दल दुजन के पल मैं दल डार खंड अखंड प्रचंड पहारन पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार पार न सका पाए सके पदमा पद वेद कतेब अभेद उचार रोजी ही राज विलोक राज गुरो रूहान की रोजी न टार कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविक भवान बनाए देव देव खपे अहंग मेव न पीव लिखे परम शिव परमाई वेद पुराण कतेव कुराना सेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पत स्यों किन श्री पद्मापद पाई आद अनंत अगाद अद्वैक सभूत भविक भवान अभय है अंत विहीन अनात्म आप अदाग अदोख अछिद्र अछा है लोगन की करता हरता जल मैं थल मैं भरता प्रवह है दीन दयाल दया कर श्री पद सुंदर श्री पद्मापद।

देव देव तान को सुरेश दान वान को महेश गंग तान को अपेश कही अत है रंग मैं रंगीन राग रूप मैं प्रवीण और काहू पे न दीन साध दीन कही अत है पाई है न पार तेज पुंज पै अपार सर्विद्या के उदार है अपार कही अत है हाथी की पुकार पल पाछ पहुंचत ताहे चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है किते ससरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है किते मत महादीन किते ब्यासे प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जच कहियत है करते हैं विचार पैना पूरन को पाव पार ताहीं ते अपार निराधार लहियत है पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार पै अपार कै बखानी है अद्वैब नासी परम पूरन प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है नासी कै कै मानिया है जंत्र हूं न जात जा की बाप हूं न मायता की पूर्ण प्रभा की सो छटा गया न मानिया है तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह कह जानिया है तेज हूं को तार है के राजसी को सार है के शुद्धता को कार है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूं को

सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है के नीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूँ के काल है के सतरण के साल है के मित्रगुण को पोगत है के वृद्धता की पासी है जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को पास है के बुद्ध हूँ को कार है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सार है जान को बचैया है ईमान को देवैया है जम जाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महिपन को मंड है के स्त्री है नर है विश्व को पर्ण है के अपदा को हरण है के सुख को कर्ण है के तेज को प्रकाश है पाई है न पार पारा वार हूं को पार जा को की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगला हिमालय गावे हबसी हल विद्या पूर्वी न पार

अंजन विहीन है, निरंजन प्रवीण है, के सेवक अधीन है, कटैया जम जाल की, देवन के देव महादेव हूँ, के देवनाद भूम के पुजैया है, मुहैया महाबाल की, राजन के राजा महासाज हूँ, के साजा महाजोग हूँ, को जोग है, तरैया द्रुम छाल की, कामना के कार है, के बुद्धता गुहार है, के सिद्धता के साथी है, के काल है, कुचाल का छीर कैसी छीरा वध, छाछ कैसी छत्रा नेर, छपा कर कैसी खप कालिंद्री के कूल के, हंसनी सी सिहा रूम हीरा सी उसे नाबाज, गंगा कैसी तार चली साधु सिंधर उल की, पारा सी पलावगढ़ रूपा कैसी रामपुर, सुरा सी सुरंगाबाद निके रही झूल की, चंपा सी चंदेनी को चंदेरी कोट, चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही, मालती सी फूल की, फटक सी कैलाश कमाऊगढ़, काशीपुर सीसा सी सुरंगाबाद निकै, सोहियत है हिमा सी हिमल हर हार सी हलब्बा नेर, खंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है, चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रागिर, चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है, गंगा सम गंग धार बकान सी बलिंदाबाद की, रतिहारी की उजियारी सोहियत है, फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी, मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है, पखरी कंधारी गोर गखरी कर देता जारी, पौन के आहारी तेरो नाम त्याईयत है, पूर्व पलाऊ काम रूप यो कमाऊ सर्व ठौर, मैं बिराजा जहां जहां जाइयत है, पूरन प्रतापी जंत्र मंत्र के अतापी नाथ, कीरत त्यारी को ना पार पाइयत है, तो प्रसाद बादड़ी छंद अद्वैन आसासन डोल अद्वैन उपमा तो लच्छा स्वरूप व्यक्त नादा जान पाओ सर्वा परमाथ, जयता मही बंतन प्रफुल शोभा बसंत, जयता प्रडुल बंतन तुरंत खग मृग महान, जयता प्रफुल सुंदर सुजान फुलतंग प्रफुल, लह लहत मोर सिर टुर जान मन मथ चौर, कुजरत कमाल राजक रहीम करुणा निधान कामल करीम, जयता बिलोक तय तय प्रसोक आजान बह अमतोज मोह रोस।

तुद जी हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापह जपह पेंता, तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट करम करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भावे मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जीव डियवर ना खोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नह चल करता सोई, तुद आपे भावे सोई वरते जी, तू आपे करह सोई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जानोई, आसा महला चौथा, तू करता सचियार मंडा साई, जो तौ भावै सोई थीसी, जो तू देहे सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनों कृपा करहै तन नाम रतन पाया, गुरमुख लाथा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिंदु जा अवर ना कोए, तू कर कर वेख जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सर वरड़ भैले निवासा, पानी पावक तिन है किया, पंक जो मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक नचित समूढ़, मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा, ना हाँ जती सती।

थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद

तृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जावद करख करा कर तारा, प्रजा धर तब देह अपारा। जब आखरख करत हों कब हों, तुम मैं मिलत दे धर सब हों। जेते बदन सृष्ट सब धारे, आप आपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम,

सच दीनी काहूं फूल राजा हुए बैठा काहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अवरक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेच्छ करो रण घाता जे सुधजताव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत है मरे पुरख जावन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताकि काल निकट नह हैं रक्षा होए ताहे सब काल दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध घर मुँह सब होई दुष्ट छा छुए सकै न कोई।

छौ फई सम सतरै सैस भणी जय अर्ध सैस फुन तीन कह जय भादौ सदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत सरिच

दोहरा जो निज ब्रह्मो सो कहा सो कह हां जग माहे जो तह प्रभु को ध्याए है अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा हर हर जन दुई एक है बे विचार कुछ नाहे जलते

अब रीझक देहु वह हमको जहां बिनती कर जोर करो। जब आओ कि औध निदान बने अत हीरन मैं तब जूझ मरों दोहरा। दसम कथा भागवत की भाखा करीब नाए अवर वासना नाहे प्रभ धर्म जुद के चाय सवैया।